प्यारा लिखा है चित चरण कमल का आसरा चित चरण कमल संग जोड़ी है बाहे जना दी पकड़ी है सिर दी जय बाहे ना छोटी है असी जकारा बुलावे सारे उच्ची वाह करनी सच्चे पातशाह साड़ी वाह।

गुरु नानक सच्चे पातशाह एक जंगल विचो विचर रहे हैं। अकाल पुरख की कुदरत नूं तकदियां साहब जी मरदाने नूं पुछण लगे। मरदानिया मौत नूं कितनी कु नेड़े समझदा है। मरदाने ने आख्या गरीब नवाज सच्चे पातशाह असी अलपग जीव हां आप सर।

दो सोने दे पैसे दिते, आख्या जा एक पैसे दा झूठ लैके आ, एक पैसे दा सच लैके आ। मर्दाना बाजार विच पुछदा फिरदा है भाई, एक पैसे दा सच चाहिदा है ते एक पैसे दा झूठ चाहिदा है। कई अनभोल मनुख अज्ञानी पुरुष माहौल भी करदे हन भाई, ऐसी वस्तु कदी बाजारा विच विकिया ते फिर ये है ही की, झूठ की है ते सच की है ये कौन दस सकदा है। ता एक जिस मनुख दे पूर्वले कर्म भगती भाव नाल भरपूर सन, इसका नाम सी मूल चंद। उदे पास जदों मर्दाना गया, आख्या की चाहिदे, मर्दाने आख्या भाई एक पैसे दा सच चाहिदे, एक पैसे दा झूठ चाहिदे। ता मूल चंद ने एक कागज ते लिख दिता मरना सच है, और एक कागज ते लिख दिता जीवना झूठ है। जे कोई कहंदा है मैं सदा रही संसार विच रहना है, एदे वर्गा झूठ नहीं, ते जे कोई कहंदा है भाई ए पता नहीं किस वेले अकाल पुरख दा सदा आ जावे, हम आदमी हां एक दमी ते जाना पवेगा। ए शरीर ता मिथ्या है, ए ता एक दिन मिट्टी दी ढेरी होना ही है। जे कोई कहंदा है भाई ए शरीर मिट्टी दी ढेरी होना है, एदे वर्गा कोई सच नहीं। तो जीवना झूठ है, मरना सच है, इसे लिए हजूर कहंदे अन्ना भाई ए मनुच्छा जन्म जप जप के सफल कर लो, पता नहीं दरगाह तो कदों सदा आ

बहु पर पंच कर परधन लियावे, सुत दारा पे आन लुटावे, मन मेरे भूले कपट ना कीजे, अंत नवेरा तेरे जी पैले। जेरी पापा दी खटी तू खट रिया है, जिना विच्चों तेरे अनेकां रिश्तेदार, बाल बच्चे घर वाली वरसाउंदी है। याद रख ए लेखा उना कोलो नहीं मंगया जाना, अंत न बेड़ा तेरे जी पै दीजे। एदे अमोलक स्वास जो वाहिगुरु ने तैनू बख्शे, तू उना दी कीमत ही ना जान सकिया। जिवें एक कंजूस सारा जीवन कमाई करता रहा, धन इकट्ठा करता रहा, ते मन विच सोचदा भाई चंगी तरह धन इकट्ठा करके ते फिर मैं इस नूं भोगांगा, फिर सुख मानांगा। सोचदिया सोचदिया अंत समा आ गया। जदों अंत समा आ गया, जमदूता ने आख्या भाई हुण तेरा अंत समा है ते तू साडे नाल चलना। ता कहन लगा मैं बड़ा धन जोड़े है, बड़िया मेहनतां कीतियां हन, बड़े छल कपट करके माया कठी कीती है, मैनू भोग तां लैण दिओ, आ मैनू 24 घंटे दे दिओ, मैं तुहानू 1 करोड़ रुपया दे दिंदा। जमदूता ने कहा एक पल भी नहीं मिल सकता, क्योंकि ए धन उथे चलदा नहीं, तू जिथे गल कर रही उथे तां नाम दा धन चलदा है। इस कंजूस ने आख्या मैं 5 करोड़ दे दिंदा हां, मैनू कुछ स्वास होर दे। आखिर कहन लगा मैं सारी जीवन दी कमाई, जितना भी मैं कमाया है, मैं सारा ही दे देंदा हां, मैनू कुछ स्वास उसके बदले दे दियो। ता जमदूता ने कहा ए स्वास तां किसे भी कीमत ते तैनू नहीं प्राप्त होण लगे। ता कहन लगा फिर मेरी एक मंग है कि मेरी कबर ते लिख देना कि मैं सारे जीवन दे पल छिन कमाई विच धन कठे करन विच ला दिते, ते सारे जीवन की कमाई दे बदले मैनू 1 श्वास भी नहीं मिलिया मुल। इस तो भाव है कि जितने अमोलक श्वास हीरियां लालां तो भी महंगे, मैं जप जप के सफल करने सी मैं व्यर्थ गवा दिते। क्योंकि हम आदमियां एक दमी पता नहीं अखीरला श्वास कदों आवे भाई, जे श्वास दे नाल तू जपया होवेगा ओ श्वास तेरा दरगाह विच कबूल हो जावेगा। इसलिए गुरु नानक सच्चे

गुरु नानक सच्ची पातशाह बख्शिश कर दिया न भाई। पही प्राप्त मानक दे होरिया, गोविंद मिलन की एहो तेरी बरिया। ए प्राप्त होए हन तेनु अमोलक स्वास, ते जितने तक दुनिया विच

आप बोलना चाहता है तो परमेश्वर की भक्ति कर, उदा कीर्तन कर, उदा जस कर, ताकि तेरा संसार ते आया सफल हो जाएगा। इसलिए जब लग दुनिया रहिए नानक किस सुनिए, चंगा सुनिए और चंगा ही कहिए। मिथत नीवी नानका गुण चंगे आईया तत, जिन्हानू ए चंगे गुण प्राप्त हन भाई, उना दा संसार ते आउना सफल सफल हो जावेगा। गुरु नानक सच्चे पातशाह

हम ऐसे अपराध। हर एक बंदा अपने गुणा का इजहार करता है, अपने गुणा की नमाइश करता है।

मैं इन्ना पुन दान करदा हां, मैं इन्ना सिमरन करदा हां। इथों तक थोड़ी जिन्नी गुरु दे दरबार विच

पीता है। भाव गुणा का इजहार ते औगुणा नु छुपा के रखता है, पर सत्संगियो कबीर जी एक सच्चे भगत इच सच्चे सेवक की गल दस रहे ने। गुरु नु मनन वाला गुरसिख कदी भी अपने मालक तो अपने औगुण छुपा के नहीं दे रखता।

से अपराधी, जिन प्रभ जीओ पिंड था दिया, तिसकी पाओ भगत नहीं सादी। तू जिडियां मेरे ते बख्शिशां कीतियां ने, जिडियां तू मेरे ते रहमतां कीतियां ने, मैं उन्हां तेरा धन्नवाद नहीं कर सकता। मैं बड़ा ही औगणां दा भरिया, देखो शब्द वे

एक निमख नकीनो में फेरा लंपट चोर दूत मतवारे तिन संग सदा विसेरा जिस कर दे विच तेरे संत जन तेरे सेवक जन कथा कीर्तन कर दे ने उस घर वाल नू मैं कदी फेरा भी नहीं मारिया मेरी मित्रता तेरे तो बिछड़ियां दे नाल तेरे तो तकियां दे नाल मेरी मित्रता भाव एक सच्चा सेवक अपने औगुण गुरु तो कदे भी नहीं लगाउंदा।

करनी ता तेरा मन सुखी होवेगा। सुबह शाम संगत विच बैठिया कर, दसा नौहां दी किरत करिया कर, जिथे धन कतर करके अपने बच्चियां दे मुंह विच पाउंदा है, गरीब गुरबे दे मुंह विच भी पाया कर। आज गुरसिख ने सतगुरु दियां गल्लां हिरदे विच वसा लईआं। सतगुरु अज तो सारे अपराध मैं छड़ दिते ने, अपना जीवन गुरु दे हुक्म अनुसार बनाया, ते थोड़े समय बाद की बख्शियां होईआं। देड़ा घर इनू नरक नजर आउंदा सी, जिस घर दे विच हर वेले लड़ाई झगड़ा हुंदा रहिंदा सी, अज ए घर इनू स्वर्ग पिया नजर आउंदा है। जिस घर दे विच बच्चे बोल कबोल मंदे बोल बोलदे सन, अज उस घर दे विचों वाहिगुरु दी आवाज आउंदी है। सतगुरु सोझी दे रहे ने, घर दे विच कलेश लड़ाई झगड़ा भी क्यों, तेरी किरत नहीं चंगी, पापां दे कीते कथे पैसे, पापां दी कमाई दा खरीदया होया पदार्थ जदों बच्चियां दे मुख विच पौना है, वो कूड़ दी कमाई खा के बच्चे बोल कबोल बोलदे ने, घर नूं नरक बना देंदे ने। पर देखो अज गुरसिख ते बख्शां होईआं, धर्म दी किरत कीती, दसां नौहां दी सच्ची किरत कीती, गरीब गुरबे दे मुंह विच पाया, गुरु लई दसबंद कढ़िया ते फिर बच्चियां दे मुंह विच पाया, अज इहदा घर स्वर्ग बन गया। वाहेगुरु दी आवाज आ रही है घर दे विच, सतगुरां दीआं बख्शां हो गईआं। सो सतगुरु बख्शिश कर रहे ने, कदे भी अपनी औगुण गुरु तो नहीं छपाउणी, तू औगुणां नूं छपा लैंदा है। आ शरीर ते कोई जख्म हो जावे ना, ए पट्टी करदा है, पर इसने की कीता, पट्टियां ते पट्टियां लवेटी जांदा है, ते अंदर जख्म होर भी गहरा हुंदा जांदा है।

मालक दी नजर विच गुनाहगार ही बनी जांदा है। क्यों नहीं अपनी अवगुण गुरु नूं दसदा वी सतगुरु मैं बड़ा वड्डा गुनाहगार हां, तू मैनू दुनिया विच भेजिया, जाके सिमरन कर, जिथे घर परिवार बच्चे पालने ने उथे सिमरन भी करी,

हम ऐसे अपराधी। ऐ सतगुरु देख असी केहो जे अपराध कर दे, देख असी केहो जे औगण कर दे। सास ग्रास भक्ति करन वाले ब्रह्म ज्ञानी बाबा आनंद सिंह जी, अज बाबा जी दे दरबार विच एक गुरमुख प्यारा फलां दी टोकरी लई ते जा के नमस्कार कीती साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब अगे। बाबा जी इन्नी निम्रता, इन्ना गुरु दा सत्कार ते संगत दा सत्कार।

बाबा जी मैं मुकदमा जितया है जानी जान बाबा जी आखन लगे भी इंज कर सारी संगत नू दस तू केड़ा मुकदमा जितया ते सत्संगियो इन केड़ा मुकदमा जितया।

आप आए हैं दुष्ट दमन, तू संसार भेजा। कहते ने मेरा मन नहीं करता तेरे चरणा तो, पर हुक्म भी मनना है। पर बार बार कह रहे ने मेरा दिल नहीं करता, किसी होर दी ड्यूटी लाओ। प्यार नाल, सत्कार नाल, किसी जोर जबरदस्ती नाल नहीं, थापड़े दे दे के जिवें प्यो पुत्र नूं समझांदे, बच्चे नूं आखदे कि मेरे पातशाह जी दे की वाक हन, आप फरमान देन आओ चलिए श्री हेमकुंड साहब, जिथे मेरे कलगीधर पातशाह जी परमात्मा निरंकार नूं जवाब दे रहे ते की आखदे।

अगर तू परमेश्वर दा नाम जपेंगा ओदी ओट ओदा आसरा लवेंगा इन्ना भगतां दी तरह ओ परमेश्वर तेरी भी रखिया करेगा तैनू ओ परमेश्वर हर सुख हर वड़ियाई अते अपने नाम दे नाल भी जोड़ेगा और अपने वर्गा बना लवेगा। इस शब्द दे विच अनेका महापुरुषां दा जिक्र नामदेव जी ने कीता है, पर आपां भगत अमरीक दे जीवन बारे विचार करांगे। भगत अमरीक एक बड़े ही चक्रवर्ती और प्रतापी राजे हुए ने। राजे भी सन पर राज कमान दे नाल भगती भी कमाई, जिदे सदका अज आपां उन्हां दे जीवन बारे विचार कर रहे हैं। नामदेव जी बयान करते ने, अमरीक को दियो अभय पद। भगत अमरीक नूं अभय पद की प्राप्ति हुई, जन्म मरण के चक्कर तों रहित हो गए। राज पवीखण अदक करियो, जिस तरह पवीखण नूं श्री रामचंद्र ने रावण नूं मार के लंका दा राज दिता, क्योंकि जेड़ा भी भगत हुंदा है उन्हूं सुख परमेश्वर दिंदा है। इसे तरह जेड़ा अमरीक भगत है इन्हूं भी परमेश्वर ने बड़ी उच्ची पदवी दिती, भगतां दी पदवी। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे विच सवैये महल्ले तीजे के जिदे विच अमरीक भगत बारे श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे विच इस तरह

मध्य भारत ओडिशा वाल से ए राजा अमरीक राज करता है पर राज भाग के सुख अपने वास्ते नहीं समझता है। राज भी कर रहा है पर नाल भगती भी ए भी भगती तो दयाल होके विष्णु भगवान जी ने अपना सुदर्शन चक्र राजा अमरीक की रक्षा वास्ते हर वक्त इन्हां दे कोल रखिया होया सी कि जदों भी भगत ते कोई पीड़ पवे तां सुदर्शन चक्र नूं ए हुक्म सी तू अमरीक की रक्षा करनी। इस गल की गवाही भाई गुरदास जी भी भरते। राजे अमरीक ने वर्त रखे, पूजा पाठ कराया, यज्ञ कराया और दान पुन करने वास्ते बिंद्रावन पहुंचया। बिंद्रावन जिथे कृष्ण भगवान जी रिहा करते सन, इस जगह आके 6 करोड़ गौवां राजे अमरीक ने दान कीतियां। 6 करोड़ गौवां दे नाल सोना चांदी अनेकां वस्तुआं होर भी दान कीतियां। धर्मी बड़ा सी, नेक बड़ा सी, दान पुन करके ए राजा अमरीक वापस अपने महलां नूं तुरिया। महलां विच आके वर्त तोड़ना सी। वापस आंदे रस्ते दे विच दुर्वासा रिखी दा मेल होया। राजे ने दुर्वासा रिखी नूं नमस्कार कीती पर दुर्वासा रिखी क्रोधी बड़े सन। कहन लगे, राजन तू इस वेले कित्थों आ रहे? राजा अमरीक कहन लगे, मैं बिंद्रावन तो आ रहे हैं और महलों में जाके वर्त तोड़ना है। मेरी इच्छा है आप जी महलों में आके चरण पाओ, भोजन छको ता मैं वर्त तोड़ा। दुर्वासा रिखी कहन लगे, ठीक है राजन, जदों तक मैं भोजन ना छका तू वर्त नहीं तोड़ना, मैं आवांगा जरूर। इस गल नूं भाई गुरदास जी ने अपनी वार दे विच इस तरह बयान किया है।

मोह व्रत है, अम्बरीक ने व्रत रखे। रात पई दुर्भाषा आया, दुर्भाषा ऋषि आया, अम्बरीक नाल मेल होया, ते हुण पेड़ हस उपारना ओठ नावन नदी सुधाया। दुर्भाषा ऋषि नदी ते इशनान करन वास्ते चला गया कि राजन मैं इशनान करके आना, फिर प्रसाद छकांगा ते फिर तू अपना व्रत तोड़ी। अमरीक कहन लगा सत बचन। ए दुर्भाषा ऋषि नदी ते पहुंचया, इशनान कीता, पर है ए मन मर्जी दा मालिक दुर्भाषा ऋषि। चाहिदा तां ए सी इशनान करके जल्दी वापस आ जांदा, पर इशनान करके ए होर नित क्रिया विच रुझ गए। उधर व्रत तोड़न दा समा निकलिया जा रहा। सारिया ने ही विचार कीती कि जापद हुण दुर्भाषा ऋषि नहीं आणगे, क्योंकि देर बहुत हो गई है। अमरीक राजा कहन लगा मैं वचन दिता, जे दुर्भाषा जी ने प्रसादा ना छकिया ते वर्त किस तरह तोड़ा। विद्वान सज्जना नु बुलाया, सारे कहा समा बीता जा रहा, दुर्भाषा ऋषि नहीं आया, या तो भुल गए ने या किधरे होर चले गए ने, ते तुसी हुण वर्त तोड़ लो, अन्न ना खाओ पानी पी लो। सारिया की सलाह से भगत अमरीक ने पानी पी के ते अपना व्रत तोड़िया। इधर व्रत तोड़िया, उधर दुर्भाषा ऋषि आ पहुंचे। भाई गुरदास जी

दरबार शरीफ ही जद इन्हें सुनिया कि ना तो देवते बचा सकते ने ना खुद भगवान। जद भगवान ने कह दिता कि जदों तक अमरीक ना चाहेगा तू बच नहीं सकता, ता दुर्बादशाह रिखी हुण रिखी होण दा माण कट गए। दुर्बादशाह रिखी शिवलोक इंद्रलोक ब्रह्मलोक अते बैकुंठ तों हुण वापस घुमदा होया इस मात लोक विच इस धरती ते दुर्बादशाह रिखी राजा अमरीक दे राजमहलां विच आया। पिछे पिछे सुदर्शन चक्र भी है। हुण दुर्बादशाह रिखी मन विच मान नहीं रहा, हाथ जोड़ के ते अमरीक भगत दे चरणा ते डिग पिया और कहन लगा, राजन मैनू माफ कर दे, मेरी जान बचा। पर सात संगत भगत अमरीक ए नहीं सोचता कि एक मां ऋषि मेरे चरणा ते डिगा पिया, ओदे मन विच मान नहीं, उन्हें फिर भी हाथ जोड़े ने। कहन लगे दुर्बादशाह रिखी नूं, तुसी बड़े उच्चे हो, परमेश्वर की बंदगी कीती है, तुसी मेरे पैरां ते मत्था टेको, ए ठीक नहीं। दुर्बादशाह रिखी उठ के खड़े होए ने, पर हाले भी हाथ जोड़े ने, क्योंकि सुदर्शन चक्र हाले पिछा नहीं छड़ रहे। भाई गुरदास जी बयान करते ने, आए पिया शरणागति माटी दा अमरीक छुड़ाया, भगत वछल जय बिरद सदाया। जदों ए दुर्बादशाह रिखी भगत अमरीक दी शरण विच आया, ता फिर अमरीक ने बेनती की थी, ऐ भगवान अपने इस चक्कर नू वापस बुलाओ ते दुर्बादशाह नू बख्श दो। अमरीक ने दुर्बादशाह रिखी दी सुदर्शन चक्कर तो बंद खलास कराई। ता भाई गुरदास जी कहंदे ने, भगत वछल जय बिरद रखाया। ओ परमेश्वर भगत वछल है, वो अपनी बिरती रखिया करता है, भाव कि जेड़ा ओदा हो जावे।